0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल

0: बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, pro-active and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office but by public service. The nation is paying homage to Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In her message on Gandhi Jayanti, President Draupadi Murmu said, Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. She paid tribute to Mahatma Gandhi and said his life and ideals are widely respected across the world. She expressed confidence that India is advancing towards the goal of Vikasit Bharat by 2047. A Sarv Dharma Prarthana Sabha will be held at Mahatma Gandhi Samadhi at Rajghat in New Delhi

सचमुच सुबह की इस पहली अगुवाई में कितना सुकून भुला है। तो सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो सुहानी सुबह में, और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो दोस्तों, आज ये 2 अक्टूबर यानी कि सुबह की हल्की ठंडी हवा खिड़की से छन कर आती, गुनगुनी धूप और एक खूबसूरत सा ठहराव। कभी कभी सुबह का ये सबसे बड़ा जादू बस इतना ही होता है कि आप एक पल ठहरे और अपने आंगन के फूलों को देखें और उनके साथ बेफिक्र मुस्कुरा ले। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी बहुत हसीन है, बस शर्त इतनी है कि हम इन फूलों की तरह हर सुबह खिलना सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, सुबह की इस खुमारी में थोड़ी और मिठास घोलते हैं फिल्म मिली के इस बेहद प्यारे और मासूम तराने के साथ। आप इस धुन पर मुस्कुराइए, क्योंकि इस प्यारे से गीत के ठीक बाद हम जुड़ेंगे आज की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ और जानेंगे आज की देश और दुनिया में क्या कुछ घट रहा है।

दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 7:12:10, यानी कि अब समय हो चला है कि आज की ताजा तरीन खबरों की ओर मुड़ने का। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर से फ्लाई दुबई बिल्कुल विमान में बहादुरी दिखाने वाले पायलट कैप्टन स्मिथ के साहस का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कल जो एक घटना घटी और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य सूझबूझ और साहस का परिचय दिया और आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा यानी कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया और हर देशवासी को स्मिथ का ये पराक्रम गौरव से भर देता है। बिल्कुल जिस प्रकार से कैप्टन स्मिथ ने अपने साहस का हुनर दिखाया, बिल्कुल ये कहने वाली बात है क्योंकि इसमें इंसान निशब्द हो जाता है जिसने इसे पूरी तरह से पूरे विमान के लोगों को बचाया। तो चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर रुख करती हूँ। रेजी नगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी प्रचार तेज कर दिए है और गुरुवार को मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने रानी नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए

और जोधपुर एयरबेस पर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान आसमान में हैरतअंगेज नजारे देखने को मिल रहे हैं। हवाई अभ्यास के दौरान एक साथ 60 से 80 लड़ाकू विमानों ने जटिल हवाई मिशनों को अंजाम दिया, जिसके चलते पश्चिमी राजस्थान का एयर स्पेस किसी वास्तविक युद्ध क्षेत्र की तरह नजर आने लगा था। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 7:14:05 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह प्रदीप ज्योति के साथ सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो दोस्तों, बातों और गीतों का ये सिलसिला चलेगा यूं ही ठीक सुबह के 8 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो चलिए दोस्तों अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से पूर्णिया के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के केंद्रीय कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार बिहार में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगी। और अगर दोस्तों मौसम के हाल देखूं तो राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 जिलों में 5 से 7 अक्टूबर तक हल्की बारिश होने की संभावना है। और राज्य के जिन जिलों में 5 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है उनमें देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोंडा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। इसके अलावा 6 और 7 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जिले में भी गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी। और साथ ही साथ दोस्तों दुर्गा पूजा के पावन अवसर से ठीक पहले कोलकाता नगर निगम ने शहर की संपत्ति के करदाताओं को एक बड़ी राहत देने का फैसला किया है। लंबे समय से लंबित संपत्ति कर की वसूली की रफ्तार देने के लिए निगम इंसेंटिव वेवर ऑफ इंस्टेट एंड पेनल्टी टू दी प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स स्कीम 2026 की शुरुआत करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो चलिए दोस्तों अब खेल की खबरों की ओर रुख करते हैं। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने जीता कांस्य पदक। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम को गुरुवार के एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में मलेशियाइयों के हाथों से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं भारतीय महिला टीम भी सेमीफाइनल में हांगकांग से 1-2 से हार कर कांस्य पदक ही जीत सकी। और दोस्तों का भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया और फाइनल में किया प्रवेश। अभिषेक के आखिरी मिनट में किए गए शानदार गोल की बदौलत भारत ने रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियाई खेल 2026 के पुरुष हॉकी फाइनल में जगह बना ली। ग्रीफू प्रीफ्रैक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने एक समय 3-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 3-3 कर दिया। और इसके बाद अभिषेक ने खेल समाप्त होने से 49 सेकंड पहले निर्णायक गोल दागकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। और अगर कुश्ती की बात की जाए तो नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में जीता ऐतिहासिक रजत। भारतीय पहलवान नितेश सिवाच ने एशियाई खेलों में पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। स्वर्ण पदक के मुकाबले में नितेश को जापान के यूरी नाकाजातो के खिलाफ 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। और इस रजत पदक के साथ नितेश एशियाई खेलों में ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। और नौकायान में मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबेल ने जीता रजत। भारत के मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबेल ने एशियाई खेल 2026 में नौकायान की पुरुष स्किफ 49 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत को इस संस्करण का पहला नौकायान पदक दिलाया। और चीन के वेन जेंडिंग और लियो तान ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि हांगकांग ने कांस्य पदक हासिल किया। और भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन खेलों 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रनों से रौंद कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां स्वर्ण पदक मुकाबले में उनका सामना शनिवार को पाकिस्तान से होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया और भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन के नाबाद अर्धशतक और वैभव सूर्यवंशी को 38 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 9.5 ओवर में केवल 45 रनों पर ही सिमट गई। और भारत की लंबी कूद एथलीट एनसी सीजन की थकान और किस्मत ने उन्हें एशियाई खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 2 सेंटीमीटर दूर कर दिया। मुकाबले में लंबे समय तक बढ़त बनाए रखने वाली एनसी को चीन की यिंग हुआंग ने 6.55 मीटर की छलांग लगाकर पीछे छोड़ दिया। चीन की मेंगी टीन ने 6.46 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों आज की ताजा खबरें यहीं तक, लेकिन बातों और गीतों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 8 बजे तक। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए अपनी दोस्त ज्योति के साथ कार्यक्रम सुहानी सुबह में सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो चलिए दोस्तों इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब जान लेते कि आज के मौसम का हाल कैसा रहेगा। आंशिक रूप से आज बादल छाए रहेंगे और दोपहर तक आसमान पूरी तरह बादलों से ढक जाएगा और साथ ही हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और कल का जो अधिकतम तापमान नापा गया था वो था 32.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य से 0.4 डिग्री कम। और न्यूनतम तापमान थी 26.7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य से 0.7 डिग्री ज्यादा। और अधिकतम आर्द्रता 96% और न्यूनतम आर्द्रता 66%। तो दोस्तों, ये तो रहा मौसम का हाल, लेकिन हल्की गुलाबी ठंडक ने दस्तक दे दी है और हवाओं में एक मीठा सा एहसास घुल चुका है। तो ऐसे सुहाने मौसम में दिल बस यही गुनगुनाने को कहता है क्या। तो सुनिए फिल्म अनाड़ी से यह गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

तो दोस्तों तारीख जब 2 अक्टूबर आती है तो कैलेंडर का ये पन्ना सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि भारत के इतिहास और हमारी रूह से जुड़े कई सुनहरे पलों का गवाह बन जाता है। और आज का दिन 3 ऐसी महान शख्सियतों और विचारों के नाम है जिन्होंने अपने अपने अंदाज में इस देश को गढ़ा और संवारा है। तो दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की मिसाल। सबसे पहले नमन उस महामानव को जिसने बिना किसी हथियार के सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी हमारे प्यारे बापू, आज उनकी जयंती है। बापू कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उन्होंने हमें सिखाया कि सादगी सबसे बड़ा गहना है और स्वच्छता सिर्फ बाहर की नहीं हमारे विचारों की भी होनी चाहिए। और आज पूरी दुनिया इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मना रही है, जो यह याद दिलाता है कि नफरत का जवाब सिर्फ प्रेम और शांति से ही दिया जा सकता है। और दूसरे है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, सादगी और स्वाभिमान का प्रतीक। और इसी पावन तारीख को एक और महान विभूति ने इस माटी में जन्म लिया, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, सादगी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक। भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने हौसले से हिमालय से भी ऊंचे शास्त्री जी ने पूरे जवाब जब देश को नारा दिया जी बिल्कुल, और नारा दिया तो साथ ही साथ उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की रगों में स्वाभिमान दौड़ गया था। उनका पूरा जीवन हमें सिखाता है कि पद चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसान को हमेशा जमीन से जुड़ा और ईमानदार रहना चाहिए। और दोस्तों तीसरी जो सदाबहार मल्लिका है, जी हाँ, जुबली गर्ल आशा पारेख। क्योंकि आज की सुबह सिर्फ इतिहास और राजनीति के फलक पर ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के रुभले पर्दे पर भी रोशनी बिखरती है। आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत नटखट और अपनी अदाओं से दिलों पर राज करने वाली हिट गर्ल यानी कि आशा पारेख जी का। 60 और 70 के दशक में जिनकी मुस्कान और डांस के जादू ने हर फिल्म को जुबली हिट बना दिया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित आशा जी को उनकी इस सालगिरह पर हमारी पूरी सुबह सुहानी सुबह की टीम और हमारे आकाशवाणी के परिवार की ओर से और साथ ही साथ सभी श्रोताओं की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों साथ ही साथ 2 अक्टूबर सन 2014 को ही देश में स्वच्छ भारत अभियान की भी शुरुआत हुई थी, इसलिए आज का दिन अपने आसपास और मन को साफ सुथरा रखने का संकल्प का भी दिन है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा बापू के जन्मदिन को पूरे विश्व में शांति और अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए आधिकारिक दिवस भी घोषित किया गया था।

हेमंत कुमार जी की मखमली आवाज और ये सदा बहार इल्तिजा। जी हाँ, सच कहो तो आप सभी से विदा लेते हुए हमारा भी दिल बस यही कह रहा है कि बेकरार करके हमें यूं ना जाइए। लेकिन दोस्तों, घड़ी की सुइया इशारा कर रही है कि अब सुहानी सुबह के सुरीले सफर को यही थामना होगा। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, पर सुकून इस बात का है कि फिर अगली सुबह, जी हाँ, फिर इसी सुबह ठीक इसी वक्त पर एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी वही ताजगी और नए तराने लेकर। तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर के इस पावन दिन पर अपने भीतर सादगी, सच्चाई और चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान बनाए रखें। और जैसा कि आज हिंदी सिनेमा की जुबली गर्ल आशा पारेख जी का जन्मदिन भी है, तो उनके इस खास दिन पर और हमारी इस विदाई के मौके पर राजेश खन्ना और आशा जी का ये सदाबहार नगमा तो बिल्कुल लाजमी है। तो दोस्तों, अब आपकी हम सफर यानी कि अपनी दोस्त ज्योति अब आप सभी से लेती है इजाजत। आपका पूरा दिन बेहद मंगलमय, खुशनुमा और सुकून से भरा हो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस खूबसूरत विदाई गीत का आनंद लीजिए। अच्छा, तो हम

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल

0: लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
3: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
4: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
3: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्यभूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा

0: एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
2: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बनाए जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
3: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्ता की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक से दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास।

0: पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv bound plane. Brave Indian pilot Smith Mathar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. Russian President Vladimir Putin says Prime Minister Narendra Modi has very good ideas to find mutually acceptable solution for Ukraine conflict. And India bags gold medal in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was organized at his Samadhi, Rajghat, in the national capital.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एरोस्पेस क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। पदक तालिका में भारत 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ

0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित उनके समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित शासन की ओर पढ़ना है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अबीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें आबुधाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और पूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकवर टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर।

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे सुझाव। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। कनाडा ने ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा में स्वर्ण और मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीव जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में सह पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार सह पायलट ने कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा कि जांच संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा टीमों के समन्वय से की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा है कि फ्लाई दुबई विमान अपहरण का प्रयास अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमलों जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि फ्लाई दुबई विमान में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर हमला करने के बाद सहायक पायलट की कॉकपिट के नियंत्रण कक्ष में विमान की प्रणाली नष्ट करने का प्रयास किया। श्री मेंसर ने कहा कि घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसे हमले रोकने के लिए इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 6 दिन के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एरोस्पेस क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: मिलवाकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $30 अरब से बढ़ाकर $70 अरब तक करना है। श्री सिद्धू ने बताया कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता का 5वां दौर सोमवार को ओटावा में शुरू होगा। श्री सिद्धू ने LNG और महत्वपूर्ण खनिजों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों तथा बैटरियों के आपूर्तिकर्ता के रूप में कनाडा की क्षमता का उल्लेख किया। दोनों देशों ने वार्ता के 4 दौर पूरे कर लिए हैं और इस वर्ष के अंत तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप News1AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी पहलों और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री गोयल अमरीका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी में कहा कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों के लिए अधिक अवसर पैदा करना भारत की नीति के प्रमुख केंद्र में है।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी देश पर दबाव बनाने के लिए खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

0: ये श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण उत्पन्न खाद्य ईंधन और उर्वरक संकट से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज उर्वरकों की कमी कल खाद्य संकट का रूप ले सकती है। बैठक में मंत्रियों ने जबरन व्यापारी कार्रवाइयों के माध्यम से खाद्य के हथियारीकरण पर G20 वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की और इस विषय पर सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई। इससे पहले श्री गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों और अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि के राजदूत जेमिसन ग्रिर के साथ विस्कॉन्सिन के मैकवान में रॉकवेल ऑटोमेशन के कार्यालय और कारखाने का दौरा किया। उन्होंने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर प्रमुख G20 साझेदार देशों के व्यापार मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: जॉर्डन के निवेश मंत्रालय के महासचिव जाहिर अल कतरनेह के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में कल वस्त्र मंत्रालय में सचिव नीलम शमी राव से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, खरीद, निवेश और उद्योगों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। एक रिपोर्ट।
2: भारत और जॉर्डन ने प्रमुख फैशन, डिजाइन और वस्त्र संस्थानों के बीच संस्थागत और ज्ञान आधारित सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की। इनमें विद्यार्थियों और शिक्षकों का आदान प्रदान, डिजाइन में नवाचार तथा AI आधारित फैशन पूर्वानुमान में सहयोग शामिल है। भारत और जॉर्डन ने कपड़ा और परिधान क्षेत्र में सहयोग के लिए पहले से स्थापित संस्थागत व्यवस्था को फिर से सक्रिय करने की संभावना पर भी चर्चा की, ताकि चिन्हित क्षेत्रों में नियमित और व्यवस्थित संपर्क तथा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भारतीय पक्ष ने परिधान, कपड़े, तकनीकी वस्त्र, सूती और तैयार कपड़ों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बल दिया। मंत्रालय ने बताया कि बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई और दोनों पक्षों ने चर्चा के दौरान चिन्हित सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संपर्क बढ़ाने और आगे काम करने पर सहमति व्यक्त की। भानु की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
1: अमेरिका के निजी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी स्पेस एक्स ने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के कुछ समय बाद केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन पर फाल्कन 9 के प्रथम चरण के बूस्टर सफलतापूर्वक उतार दिए। इसके साथ ही नासा के क्रू 13 मिशन की शुरुआत हो गई है। यह यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ है। स्पेस एक्स ने बृहस्पतिवार 1 अक्टूबर को अमरीका के केप कैनावेरल अंतरिक्ष केंद्र से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया था। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण और मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही भारत 11 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य सहित कुल 69 पदकों के साथ तालिका में 7वें स्थान पर आ गया है। एशियाई खेलों और अन्य खेलों की जानकारी के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
3: जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहित की तिकड़ी ने विश्व और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर 5-3 से रोमांचक जीत दर्ज की। भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में ये पहला स्वर्ण पदक है। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप का आयोजन 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के बीच 57 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, से मेजबान जिम्बाब्वे और क्वालिफायर ए से आने वाली टीम शामिल है। भारत अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को केपटाउन में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। जोहानिसबर्ग में 10 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। विश्व दर्पण के लिए मैं हिमांशु कांडपाल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे सुझाव। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। कनाडा ने ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा में स्वर्ण और मिक्स टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द वर्ल्ड न्यूज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा

0: पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि आज दुनिया में हिंसा बढ़ रही है और ऐसे समय में महात्मा गांधी का अहिंसा और भाईचारे का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के वास्ते कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबुधाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदा सिद्धू ने कहा है कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 70 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद 100.1 एफएम गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

नमस्कार दोस्तों आज का दिन जो है कई मायनों में खास है, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर और आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा की उस खूबसूरत और बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री का, यानी कि जिनकी मुस्कान, नृत्य और अभिनय ने कई दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, और उनका नाम है आशा पारेख। एक ऐसी अभिनेत्री जिनका नाम लेते ही सामने आ जाता है 60 और 70 के दशक का रंगीन सिनेमा, खूबसूरत गीत, चुलबुले किरदार और एक ऐसी नायिका जो पर्दे पर आते ही कहानी में एक अलग ही रौनक भर देती थी। तो दोस्तों आज कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में करेंगे आशा पारेख के उस फिल्मी सफर का तय जो बाल कलाकार से शुरू हुआ और हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में एक खास मुकाम तक पहुंचा। तो दोस्तों आज मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को, यानी कि कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद को लेकर, सिर्फ और सिर्फ 100.1 एफएम गोल्ड करा सोना पर। तो चलिए दोस्तों बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं, क्योंकि बातों और गीतों का ये सिलसिला चलने वाला है ठीक

तो इस गीत में जिस प्रकार से तारीफें की जा रही आशा पारे की, ये कहना तो बिल्कुल सही बनता है। तो दोस्तों, इनकी शुरुआती उस फिल्म से है जिस फिल्म ने उन्हें नायिका के रूप में पहचान दिलाई थी। वो फिल्म थी दिल देखे देखो। तो दोस्तों, इन्हें हर फिल्म में अब बहुत ही आसानी से इनकी शरारत, चंचलता और आत्मविश्वास, ये सारी चीजें

यह आशा पारेख की शुरुआती फिल्मों की खासियत रही है और आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें नृत्य का शौक था और उन्होंने शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण भी लिया। बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में आने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन अभिनय का रास्ता उन्हें फिर से सिनेमा की दुनिया में ले आया। सन 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो में उन्हें बतौर नायिका एक नई पहचान दी। इसके बाद तो जैसे फिल्मों और लोकप्रिय गीतों का सिलसिला ही चल पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद, 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

खासियत रही है कि वे भावनाओं को बहुत सहजता से पर्दे पर उतार देती थी, चाहे खुशी हो, प्रेम हो, इंतजार हो या फिर विरह। उनके चेहरे के भाव और उनकी अदाएं गीतों को और भी जीवंत बना देती थी, और शायद यही वजह है कि उनके ऊपर फिल्माए गए गीत आज भी सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज उनके जन्मदिन पर हम भी उनकी इन्हीं यादों और सुरीले गीतों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कलाकार पर्दे से चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें और उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहते हैं।

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

दोस्तों, क्या ऊर्जा है इस गीत में। तीसरी मंजिल आशा पारेख के करियर की बेहद चर्चित फिल्मों में रही, शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी और आर डी बर्मन का संगीत, इन सब ने मिलकर फिल्म को एक खास पहचान दी। तो दोस्तों, आशा पारेख ने सिर्फ रोमांटिक और चुलबुले किरदार ही नहीं निभाए, बल्कि समय के साथ उनके अभिनय में गंभीरता और भावनात्मक गहराई भी दिखाई दी। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 11:43 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर।

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद, 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

जिससे विदा लेना आसान नहीं होता। आज आशा पारेख के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के गीतों और के यादगार फिल्मी सफर को याद करते हुए कार्यक्रम लो आगे उनकी याद का एक खूबसूरत सफर भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। तो दोस्तों, आशा पारेख की मुस्कान, उनकी अदाएं, उनका नृत्य और उनके ऊपर फिल्माए गए ये सदाबहार नगमे हमारी यादों में यूं ही महकते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं वही खूबसूरत गीत, जी हाँ, फिल्म मेरे सनम का, कि जाइए आप कहाँ जाइएगा। शायद गीत खत्म हो जाए मगर आशा पारेख से जुड़ी ये सुनहरी यादें कभी खत्म ना हो। तो दोस्तों, मैं हूँ आज आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और सितारे की कहानी और कुछ अनमोल लगभों के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, अलहम, सुनते रहिए संगीत की ये सुरीली दुनिया। और जाते जाते आशा पारेख को अपने आकाशवाणी के परिवार और सभी श्रोताओं की ओर से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं उनके जन्मदिन के अवसर पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता

0: परमात्मा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबूक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाई ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting of an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smith Machar has been transferred to Abu Dhabi. The Saudi press agency, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian Embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. As reported by SBA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. According to SBA, preliminary investigations by Saudi authorities in coordination with the UAE security team

0: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় আবাস ও শহরী মামলো কে মন্ত্রী মনোহর লাল ও দিল্লি কে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা নে ভী রাজঘাট পর মহাত্মা গান্ধী কো শ্রদ্ধাঞ্জলি দি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও দিল্লি কে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা নে পূর্ব প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কে জয়ন্তী পর বিজয় ঘাট স্থিত সমাধি পর উন্হে শ্রদ্ধা সুমন অর্পিত কিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও এল মুরুগান সহিত কই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নে আজ নই দিল্লি স্থিত সংবিধান সদন মে মহাত্মা গান্ধী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কো পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত কি। ইস অবসর পর ভারতীয় জনতা পার্টি অধ্যক্ষ নিতিন নবীন, কংগ্রেস অধ্যক্ষ ও রাজ্যসভা মে বিপক্ষ কে নেতা মল্লিকার্জুন খড়গে, লোকসভা মে বিপক্ষ কে নেতা রাহুল গান্ধী, কই সাংসদ, সংসদ কে বরিষ্ঠ অধিকারী তথা বিদ্যার্থীও নে ভী দোনো মহান নেতাওঁ কো ভাবভীনী শ্রদ্ধাঞ্জলি। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरीकॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के नित्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के लिए 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 71 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। महात्मा गांधी जयंती के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बंद है। बाजार सोमवार को फिर से खुलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smit Machar, whose heroics in thwarting an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. The co-pilot accused of assaulting Captain Smit Machar has been transferred to Abu Dhabi, UAE. The Saudi press agency SBA, quoting an official source at the Saudi Ministry of Interior, reported that both pilots left the country for Abu Dhabi after receiving medical clearance. The Indian Embassy in Abu Dhabi had yesterday informed that Captain Machar had been brought to the UAE and was recovering well. As reported by SBA, the aircraft landed safely at Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk at 9:45 a.m. on Wednesday, with 174 passengers and an 8-member crew, all of whom received necessary logistical and medical assistance. At 5:40 p.m., passengers continued their journey on a replacement Fly Dubai aircraft, while the crew returned to Dubai on a separate flight. The nation is paying homage today to two great leaders, the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on his 122nd birth anniversary. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi Rajghat in the national capital this morning. President Draupadi Murmu attended the Sabha and paid floral tributes to the father of the nation. President Draupadi Murmu also paid homage to Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat this morning.

0: women's recurve archery team created history by winning its maiden Asian Games gold medal. The trio of Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mahod defeated world champion South Korea 5-3 in a thrilling final. India also secured a silver medal in the mixed recurve team archery event. The Indian duo of Kumkum Mahod and Dheeraj Bommadevra finished runners-up after losing 3-5 to China in a closely contested final. In sailing, Netra Kumanan won the bronze medal in the women's dinghy event. The 29-year-old Indian sailor finished third with overall 14 points. With these performances, India climbed to sixth position in the overall medal standings. The country's medal tally rose to 72 medals, comprising 12 gold, 25 silver and 35 bronze. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh for the day. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of the southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and most parts of Gujarat and Madhya Pradesh during the next 24 hours. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi speaks to pilot of Fly Dubai, Captain Smit Machar, applauds his bravery and wishes him a quick recovery. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal holds bilateral meetings with his counterparts from France, Canada, Saudi Arabia and South Korea on the sidelines of the G20 trade ministers' meeting to strengthen trade relations. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary today. IMD forecasts heavy rainfall over Arunachal Pradesh for today, says conditions are favourable for further withdrawal of southwest monsoon from northwest India. And in Asian Games, Lovlina Borgohain clinches gold medal in women's boxing 75kg category. Total medal tally rises to 72, including 12 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस कनाडा सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाई ने महिला मुक्केबाजी के 75kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रधानमंत्री ने स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं
1: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मित ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया
3: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब

0: भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ, उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान की मेरे को बचा है।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष

0: ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान बागवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
5: मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दें।
4: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाऊ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী এফএম গোল্ড খাঁটি শোনা।
1: কিছু গান কিছু কথা আপনি শুনছেন সুরেলা সফর 100.1 এফএম গোল্ডে। সুরেলা সফর, সুরেলা সফর, সুরেলা সফরে আজ
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और ये बताया कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
3: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
2: बातचीत के दौरान भावुक स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं और प्रधानमंत्री का फोन आना उनके लिए खुशी और गर्व की बात है।
4: उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के
2: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश भर में लागू होने वाले विशेष छूट अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 16 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% तक की छूट दी जाएगी। महात्मा गांधी की जयंती वैश्विक स्तर पर मनाई जा रही है। पंजाब में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार वे तरन तारण सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा को गैर कानूनी तरीके से पार कर रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और 17 वर्षीय कुमकुम मोहोद ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारत पदक तालिका में 73 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Indian athletes continued their strong performance at the ongoing Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, winning several medals across multiple sporting events today. In boxing, Parveen Huda won the gold medal in the women's 65kg category, defeating Chinese Taipei's Nian Shin Chan 3-2 in a split decision in the final. Lovlina Borgohain also clinched a gold medal in the women's 75kg category, defeating China's Pao Ze by a unanimous 5-0 decision in the final. Earlier, India's women's recurve archery team created history by winning its maiden Asian Games gold medal. The trio of Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod defeated world champion South Korea 5-3 in a thrilling final. India won silver in men's recurve archery team event. The men's team comprising of Dheeraj Bommadevra, Yashdeep Sanjay Bhoge and Neeraj Chauhan settled for silver after losing 1-5 to South Korea in the final. With these performances, India climbed to 6th position in the overall medal standings. The country's medal tally rose to 73 medals, comprising 13 gold, 25 silver and 35 bronze. Prime Minister Narendra Modi today spoke to brave Indian pilot Captain Smith Machar, whose heroics in thwarting off an attack by his co-pilot saved 180 lives on the Fly Dubai flight from Dubai to Tel Aviv. Captain Machar gave details of his experience to the Prime Minister and spoke of what gave him courage during the incident. The Prime Minister applauded his bravery and wished him a quick recovery. Mr. Modi said the whole country is praying for him. He said Captain Smith's courage, presence of mind and composure saved many lives. The nation is paying homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarvadharma Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvadharma Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal and Delhi Chief Minister Rekha Gupta also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. On the occasion of Mahatma Gandhi's birth anniversary today, the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Mr. Bhupinder Yadav, along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, released a tigress into the Baksa Tiger Reserve in Alipurduar. While addressing the event, Mr. Yadav said the central government is committed to protecting, preserving and fostering wildlife and forests in North Bengal. He further added that under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the tiger population in India has increased manifold. Several Indian diplomatic missions across the world today marked Mahatma Gandhi's birth anniversary by paying floral tributes and recalling his timeless ideals of truth, non-violence and peace, marking Gandhi Jayanti and the

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बातचीत के दौरान भावुक स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। प्रधानमंत्री का फोन आना उनके लिए खुशी और गर्व की बात है।
2: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाया।
0: कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के 1.86 लाख करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GE3 के तीसरे चरण को मंजूरी देने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। इसे देश की जनता और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इससे देश को व्यापक लाभ प्राप्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि ये पहल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। कैप्टन स्मित मच्छार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

कई देशों में भी भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अलीपुर द्वार के बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुक्सा वन में एक बाघिन को छोड़ा। ये कदम भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूदृश्य संरक्षण और प्रजाति संरक्षण के प्रयासों से प्रेरित होकर बुक्सा में बाघों को पुनः स्थापित करने का वादा पूरा किया गया है। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की आय में वृद्धि करना है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन पर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। इस बार मामला सरकारी निविदा देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार रोधी आयोग ने श्री सेन के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री रहते एक सरकारी परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना

0: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। हाजिर है आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर विशेष कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज परियोजना प्रस्तुति में किसी न किसी एक योजना से संबंधित कई सारी बातें हम आपसे साझा करते हैं, तो आज उस सिलसिला को जारी रखते हुए मैं जिस योजना या मिशन की बात करूंगी वो है स्वच्छ भारत मिशन। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है जिसे 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती को शुरू किया गया था। इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। खुले में शौच मुक्त बनाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराकर खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना, कचरा प्रबंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट यानी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन और निपटान करना, जागृति लाना, लोगों में साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना और नागरिकों को सामूहिक रूप से जोड़ना। पहले चरण की बात करूं तो पहला चरण, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी जिसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक था, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत में खुले में शौच मुक्त घोषित करना था। दूसरे चरण की बात करूं तो इसे फरवरी 2020 में स्वीकृति मिली। इसका फोकस ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और गांवों व शहरों को ओडीएफ प्लस और साथ ही में कचरा मुक्त बनाने की ओर जो है हम अग्रसर हों और आगे बढ़ें। इस अभियान के तहत देश भर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य, साफ सफाई और स्वच्छता के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा जैसे विशेष वार्षिक अभियानों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी को लगातार बढ़ावा दिया जाता है। और अंत में ये जरूर कहना चाहूंगी कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम साफ रहना पसंद करते हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा हमें खुद को होगा, क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और सबसे बड़ी अगर संपत्ति है तो वो आपकी सेहत है। आप स्वस्थ रहेंगे और चारों तरफ अगर स्वच्छता की ओर अगर अपना ध्यान डालेंगे और स्वच्छ रखेंगे आसपास के जगह को, तो ऑटोमेटिकली स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 100% पूरा हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर किसी रोज किसी और योजना के साथ जरूर बहुत सारी बातें आपसे साझा करूंगी। फिलहाल रुक करती हूं उस कार्यक्रम की ओर जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी कि चायन क्लासिक्स।

100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:20 और आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं इवनिंग वाले मनपसंद कार्यक्रम, हिंदी कार्यक्रम चायन क्लासिक्स का। तो हाजिर है आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, ढेर सारे प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी का खैर मकदम करती है, वेलकम करती है, स्वागत करती है इस कार्यक्रम में। और आपको बता दूं कि आज की शाम 10 मिनट का हम न्यूज ब्रेक लेंगे, साथ में ले चलेंगे दिल्ली केंद्र, वहां पहले 5 मिनट न्यूज इन हिंदी और उसके बाद अगले 5 मिनट न्यूज इन इंग्लिश, यानी कि 6 से 6:05 न्यूज इन हिंदी और 6:05 से 6:10 न्यूज इन इंग्लिश रहेगा। और मैं रहूंगी आपके साथ 6:30 बजे तक। और सुनेंगे क्या 70s के रोमांटिक ट्रैक्स। शुरुआत करना चाहूंगी इस गीत के साथ जिसे हमने लिया फिल्म कटी पतंग से, किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को आप सुनेंगे जिसे बड़े आनंद के साथ आनंद बख्शी ने कलमबद्ध किया है और संगीत का जादू है आर डी बर्मन का।

इस खूबसूरत से रोमांटिक ट्रैक को आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम लहू के दो रंग, लिरिसिस्ट फारूक केसर, कंपोजर पप्पी लहरी। अगला गाना आप तक पहुंचाने से पहले कुछ कहना चाहती हूं। क्यों, क्या कहते हैं, इजाजत देते हैं? चलिए आप तो इजाजत देंगे ही। चलिए जब आपने इजाजत दे दिया तो कह देती हूं। किसी ना किसी पे किसी को एतबार हो जाता है, अजनबी कोई शख्स भी दिल का प्यार हो जाता है। खूबी की जरूरत नहीं होती मोहब्बत में, बस किसी से अजनबी बनकर भी प्यार हो जाता है।

बातों में मेरा चैन चुरा लेती हो तुम, ना जाने कहां से जादू सीख गई हो तुम। हर रोज सपने में आ जाती हो तुम, मेरे दिल का सुकून बन जाती हो तुम।

कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को सुना अपने फिल्म अनामिका से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन। स्टूडियो की घड़ी में समय उजला है 5:44:45 हो गया। यही तो समय का कमाल है, रुकता नहीं कभी, किसी के लिए भी नहीं। और ठीक उससे यही सीख हम लोग भी लेते हैं कि रुकना नहीं है, चलते ही रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ते हुए आपको मैं सुनवाना चाहूंगी फिल्म यादों की बारात से आशा भोसले और शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की आवाज में वो खूबसूरत गीत। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो मतलब जितने लोग भी ये फिल्म देखते थे और फिल्म ना भी देखे हो, अगर ये गाने को सुना है या कोई सुनी है तो फिर इसे गुनगुनाते तो रहे सालों साल तक, और आज भी जब सुनेंगे तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे गुनगुनाने से। यादों की बारात से इस गीत को सुनिए जिसे कलमबद्ध किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। वैसे इसमें चोरी का जिक्र है, पर ये वो चोरी है ना जिसका कोई एफआईआर नहीं कराता कोई। क्यों, बड़ी मतलब क्या बताऊं, दिल को छू लेने वाली ये चोरी होती है।

छोटी सी बात फिल्म से, अगला गीत आशा भोसले और यशुदास की आवाज में, गीतकार योगेश, संगीतकार सलील चौधरी।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 5:55 और आपको बता दूं 6 बजे से आप सुनेंगे पहले 5 मिनट न्यूज इन हिंदी, 6:05 से 6:10 न्यूज इन इंग्लिश और 6:10 पर वापस हाजिर हो जाएगी आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत लेकर चैन क्लासिक्स का पार्ट 2। और फिलहाल आप सभी के लिए न्यूज ब्रेक की ओर रुख करते हुए अगला गीत है बहुत ही खूबसूरत। सारे के सारे गीत जो है ना वो लव मीटर पे पूरे एकदम रोमांस में 100% मिला है उन्हें और सारे गाने बहुत ही यादगार है, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले गाने हैं और ऐसे गाने हैं जो कि आप एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनना चाहते होंगे। ऐसा ही एक गाना है, अगला गाना बरसात की एक रात से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में इस गीत को सुनेंगे। आनंद बख्शी ने इसे कलमबद्ध किया है और आर टी बर्मन ने संगीतबद्ध किया है।

0: कैप्टन स्मिथ पच्छार ने दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar

0: एक बार फिर तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है चाय एंड क्लासिक्स। तो सुलक्षणा पर्वत रहेगी आपके साथ 6:10 से लेकर 6:30 तक कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड।

इस गीत को आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया और आरडी बर्मन ने संगीत से सजाया। और ऐसा है दोस्तों कि इंसानों के बारे में हम सुनते हैं कि कोई इंसान बेईमान हो जाता है, लेकिन सिर्फ ये बेईमानी इंसानों तक ही सीमित नहीं है, मौसम पर भी लागू होता है। ऐसा मैं नहीं कहती, बल्कि ऐसा अगले गाने में आप सुनेंगे। शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लोफर से ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो सुनते हैं इस गीत को और देखते हैं कि कैसे मौसम भी बेईमान हो सकता है।

अब मौसम की बेईमानी पे तो किसी का कंट्रोल नहीं चल सकता, लेकिन हाँ खुद कोई बेईमानी ना करे इस पे तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। चलिए इस पे किसी और दिन हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, कभी कभी मेरे दिल में, ये मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ और ना ही आपकी बात कह रही हूँ, ये जो मैंने कहा कभी कभी मेरे दिल में, ये जो है कभी कभी फिल्म से अगला गाना आप सुनेंगे। इस फिल्म से मुकेश की आवाज़ में, गीतकार साहिर, संगीतकार खयाम।

0: स्टूडियो की घड़ी में समय उचला है 6:27 यानी कि 6:30 तक ये कार्यक्रम आप सुनते हैं और समय ज्यादा शेष नहीं बचा है। वैसे बता दूं, आप दोबारा मुझे सुनना चाहते तो बिल्कुल सुन सकते हैं, दोबारा नहीं थर्ड टाइम अगर सुनना चाहते, दो बार तो सुनी चुके एफएम गोल्ड पर, लेकिन तीसरी बार सुनना चाहते हैं तो आपको ट्यून करना पड़ेगा 7:02 पर दिल से दिल तक वाला चैनल यानी कि 107 FM रेनबो, जहां लेकर आऊंगी मैं कार्यक्रम सेलुलॉयड सुपरहिट्स। और फिलहाल चलते चलते आप सभी के लिए मुकेश की आवाज में फिल्म आनंद से ये गीत, बड़े आनंद के साथ इस गीत को सुनिए और आज्ञा दीजिए अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। नमस्कार।
1: मैंने

0: fact that the world powers, so-called economic world powers, you know, are changing the rules of the games almost on a daily basis, if not a weekly basis. Statements coming in, they change a lot of stuff. So in that situation, it is imperative for everybody, all the countries specifically, to adhere to these principles which are already in place, so that the troubles for the lesser economically fortunate countries, or you know, the developing economies, so to specifically, are not under undue duress or pressure.
1: और चलते हैं अगली खबर की ओर. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई. फ्रांस के विदेश मंत्री और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना है. विशाल जी, आप क्या कहेंगे, G20 के साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं भारत की तरफ से की जा रही हैं, जैसा कि अभी खबर में हमने देखा फ्रांस और कनाडा के साथ खास तौर पे. इससे भारत का जो अभी व्यापार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, उससे भारत को किस तरह का लाभ पहुंचने की उम्मीद है?
0: देखिए, भारत ने बहुत ही, जैसे कहा जाए, एक बेहतरीन आर्थिक रणनीति यहाँ अपनाई है, और आर्थिक मामलों में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेड के लिहाज से, यानी कि व्यापार के लिहाज से, आप जितने ज़्यादा देशों के साथ अलग अलग तरीके से अपने समझौते बना पाएं, अलग अलग तरीके से उनसे बातचीत करके उनका फायदा और अपना फायदा दोनों एक देख पाएं, वो ज्यादा बेहतर है. जो मल्टीलैटरलिज्म जिसे कहा जाता है, उससे इतर जाके अब थोड़ा सा बायलैटरल कोऑपरेशन जो है, उस पर जोर ज्यादा है. इसीलिए FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर जैसे कनाडा के साथ CEPA जो बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस तरह के एग्रीमेंट्स पे चर्चा और इस तरह के एग्रीमेंट को मूर्त रूप देने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पिछले 3 से 4 साल में हमने देखी है कि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उस पर ज़्यादा मोमेंटम हुआ है. कनाडा से बातचीत अभी जारी है, उसमें अलग अलग और किस तरह की उसमें जमाया घटा किया जा सकता है उस एग्रीमेंट में. उसके अलावा चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, या फिर और यूरोपीय जो बाकी देश हैं उनके साथ हो, ब्रिटेन के साथ हमने एक समझौता किया, और भी ऐसे कई देश हैं, और अमेरिका के साथ एक अलग समझौते पे लगातार बातचीत चल रही है. उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ पर ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है. तो ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि हर इस वक्त, आज की स्थिति में, हर इकोनॉमी की तरह, हर देश की तरह, भारत भी ये चाहता है कि उसके ऑप्शंस खुले हों, उसके विकल्प खुले हों, और उसकी जो जो व्यापारिक संगठन हैं या देसी कंपनियां हैं, जिन्हें हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कहें या हमारी जो बड़ी कंपनियां वो कहें, उन्हें और बेहतरीन मौके मिले, और हमारे देश में जो कंज्यूमर बैठा है उसको केवल बाजार के तौर पे न देखा जाए, बल्कि उसे भी बेहतरीन क्वालिटी वाले विकल्प चुनने को मिले.
1: जी, और अगर खास तौर से हम यूरोपीय यूनियन की बात करें, जो भारत के साथ समझौता जो FTA हुआ है, उसके क्या क्या आपको भारत के पक्ष में क्या परिणाम दिखाई देते हैं?
0: देखिए, यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा संगठन है, और सीधे तौर पर अगर आप यूरोप यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए करते हैं तो यानी कि ईयू के अंडर आने वाले जितने भी देश हैं वो बाध्य होते हैं उस समझौते को मानने के लिए। अलग अलग देशों का अपना अलग अलग जिसे कहा जाए एक्सपर्टीज है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज है, कहीं टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज है, किसी के पास साइंटिफिक जो R&D जिसे कहा जाए उसमें वो आगे बढ़कर काम कर रहा है। फ्रांस जैसे देश हैं जिनके साथ हमारा

0: रक्षा समझौता अलग से है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, तो इन सब चीजों को अलग अलग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर्स में बल मिलता है और ना केवल भारत का जो कंज्यूमर है उसे, या चाहे कंज्यूमर में आप चाहे सरकार मान लें या हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी माने क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा एक रक्षा समझौता है, बल्कि हमारी जो कंपनियां हैं उनके लिए बाजार एक नया बाजार खुलता है, उनको अपने जो क्वालिटी प्रोडक्ट है यानी कि अपनी गुणवत्ता को सुधारने के बाद बाजार में अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो अपनी एक पहचान बनानी है उसके लिए एक अलग बाजार मिलेगा, अलग मौका मिलेगा। केवल यह नहीं माना जा सकता कि आप अब सामान, अगर आपकी कंपनी का सामान अगर अमेरिका में बिकता है तो ही आप बड़ी कंपनी है, तो अगर उसके लिए विकल्प ज्यादा खुलते हैं तो यानी कि मौके ज्यादा मिलेंगे कंपनियों को और उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी और जिसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को।
1: The signal that he would like to join the EU, the country might, and we already have an agreement with UK, and that is going to be a feather in our cap.
0: Well, it's going to be really interesting as well because you know that's a separate a battle of wits which is going on there. Yeah. Because let's not forget that this was one particular topic on which the United Kingdom was almost split in between, and this time around perhaps they're taking a turnaround because of the internal domestic politics as well, because there are two parts of the kingdom perhaps which have not been in favor since day one, and seemingly they're still not in favor as well. So domestic issues, domestic pressures do tend to make international calls being made by sometimes leaders of the free world as well. Let's see how far the British Prime Minister can push this through.
1: So, and the minister is also focused quite a bit on the India EU free trade agreement and also SEPA. He wants these to be expedited.
0: That's
1: rightfully so, because
0: yes indeed, and it serves the purpose for both. When we talk about SEPA, it serves the purpose for both India and Canada, because let's not forget that the Canada was also on the short end of the stick when President Trump was going around brandishing his tariff stick, so there was a lot of not so healthy exchange of words between both sides. So of course Canada would also want to go ahead and hedge its bets. That's one, and two, look for more sustained partnerships with perhaps more larger markets. That's one from their angle. And two, of course, they would also want to be there on the table and say that, okay, fine, if it's not going our way, then we have somebody else to fall back upon. And in current economic scenario, I think apart from China, India is the other market to fall back upon.
2: और चलते हैं शेयर बाजार का हाल भी जान लेते हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार बंद है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर शेयर इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार नहीं हुआ। बाजार सोमवार को फिर खुलेंगे। अवकाश से पहले बेंचमार्क सूचकांकों पर लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा और इनमें लगातार 8वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। इस अवसर पर आज भारतीय मुद्रा बाजार भी बंद रहे। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 96.31 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। विशाल जी, आप क्या कहेंगे? आज हालांकि शेयर बाजार बंद है, लेकिन लगातार 8 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दबाव बना हुआ है और गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट को आप सिग्निफिकेंट तो है, बट देन इसका इम्पैक्ट किस तरह का आप देखते हैं?
0: देखिए, आंकड़ों को दो तरीके से देखा जाता है। हर बार जब हम इस कार्यक्रम पे आंकड़ों पे चर्चा करते हैं, और मैं हमेशा आंकड़ों के आधार पे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि लेकिन आंकड़ों को देखने का भी अपना नजरिया है। अब अगर गिलास को आप देखें तो वो आधा गिलास खाली भी हो सकता है और आधा गिलास भरा भी हो सकता है। निश्चित रूप से जो आंकड़े आपने अभी बताए और जो आंकड़े जिन पर चर्चा भी की जा रही है, जिन पर लिखा भी जा रहा है, वो दुरुस्त हैं। यानी कि लगातार 8 हफ्ते तक बाजार में गिरावट दर्ज की गई और ऐसा लगभग 2 दशक के बाद ऐसा देखने को मिला है। लेकिन वो गिरावट कितनी है? नंबर एक, वो गिरावट लगभग 9% के आसपास है अगर मोटे तौर पे देखें तो। हाँ, इसमें यह भी सच है कि 52-week हाई यानी कि पूरे 52 हफ्ते का जो सबसे ऊंचा आंकड़ा था उससे आप बहुत नीचे आ गए हैं। लेकिन अब इनके कारणों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान डालें तो समझ में आएगा कि क्या कोई नया फैक्टर ऐड हुआ है। जी नहीं, ये सब वही फैक्टर हैं जो लगभग पिछले एक साल से इन सभी फैक्टर से बाजार जूझ रहा था, चाहे वो एफआईआई

0: मनी का आउटफ्लो हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो जिसे कहा जाए हम सिग्नल्स जो आते हैं, इंटरनेशनल सिग्नल्स जिसे कहा जा सकता है, मार्केट को क्यों जो मिलते हैं, जो क्रूड ऑयल की कीमतों की हम बात करें उसमें जिस तरह से कोई कोई कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ दिनों के लिए ऊपर जाती हैं और अगर वहां माहौल थोड़ा सा शांत रहता है तो कुछ दिनों के लिए नीचे आती हैं, यानी कि कोई एक सस्टेन्ड क्यू मार्केट को नहीं मिल रहा था, नंबर दो। और नंबर तीन अगर हम देखें तो जो डोमेस्टिक कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे जैसे अब मोटे तौर पर कल से जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े उनमें सब में ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अगर आंकड़े देखें तो उनमें उनके आंकड़े उनकी जो बिकवाली है यानी कि उनके प्रोडक्ट्स की जो बिकवाली है, सेल जिसे सेल का आंकड़ा जिसे कहें, वो तो बहुत ऊपर गया, लेकिन जो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए वो उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं थे जिस एक्सपेक्टेशंस पे शायद इन्वेस्टर्स चाहते थे। दूसरा, अगर वापस हम एफआईआई की तरफ जाएं तो वहां भी एक थोड़ी सी डाइकोटॉमी है। डाइकोटॉमी इसलिए है कि सितंबर के महीने में लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बाजार से एफआईआई ने निकाला, यानी कि इक्विटी बेचकर निकाला, लेकिन प्राइमरी मार्केट में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास उन्हीं एफआईआई ने इन्वेस्ट भी किया। अब वो इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है वहां उनको उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर कहा जाएगा कि इक्विटी मार्केट से क्यों हटाया गया, तो हो सकता है, और हो सकता है कि ये आंकड़े भी बताते हैं कि जो लार्ज कैप जो है हमारे भारत के बाजार में उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन्वेस्टर्स चाहते होंगे। तो ये पैसा लगाना और पैसा निकालना ये बाजार में निरंतर लगा रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। इसीलिए मेरा कहना है गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये अपने नजरिए पर निर्भर करता है और ये आपके रिस्क एपेटाइट पर भी निर्भर करता है कि आप किस हद तक होराइजन की किस हद तक आप देख पाते हैं।
1: सो देयरफॉर विशाल, व्हिच डोमेस्टिक ट्रिगर्स शुड इन्वेस्टर्स वॉच आउट फॉर this next week, the RBI policy and its commentary, the FPI flow data, early Q2 earnings signals, or the macro data as you elucidated quite a bit on them. So what should I look out for while I'm thinking of investments next week?
0: When you talk about macro data, all of these are the factors. You can't overlook either of these factors. That's one. But two, if you're an investor, what are you looking out for? You're looking out for investing in a particular company, in a scrip, in a small cap company, in a mid cap company, in a large cap company. Somewhere you're looking to invest. So the larger part which you should look out for is to look for that particular company's financial health. That's one. Its capacity building. That's two. Its future horizon. That's three. And what does the sector say? The particular sector to which the company belongs. What do the policies say? All the other larger data is creating a larger picture. But we are not investing into the larger picture as investors. We small investors, retail investors, I'm looking at from their perspective. I'm not looking at from FII's perspectives here. So I should be looking as an investor to the individual script which I am going to invest in, and then take a concerted decision, because ultimately the entire atmosphere which is being created, that will of course affect my investment, but that will of course affect the investment of the entire market as well. Largely what will affect my investment more is whether the company which I have invested in has the potential to grow, has the wherewithal to grow, does its management has the willpower to go ahead and take those calls which need to be taken in that particular sector.
1: Okay. Now, very important is that the key concern for the market is, I believe, not oil pressure alone, but the combined pressure from elevated bond yields, tight global liquidity, and the geopolitical uncertainty. While softer crude prices, can improve, shipments can be constructive, higher yields raise the cost of capital, compress equity valuations, and make fixed income assets relatively more attractive. So, how should I react when I talk about the elevated bond, or look at the elevated bond yields?
0: I think this can be answered in just two, three sentences, because the bond yields is something which is a larger game played well beyond the control of even the markets as well, because there are larger economic interests of specific countries which are involved, which then drive the bond yields of either on this end or on that end as well. We should be on the lookout, be concerned about it as well, but that's not the only factor. So of course we should not be very worried about it, unless we are unless somebody is a huge FII investor and perhaps maybe moving
1: should
0: in.
1: Should I be worried about FII is leaving?
0: No, not at all.
1: 26,000.

0: crores is what they took out till yesterday.
1: Not a big picture. I must tell you, because you know, in the past there have been days wherein 30,000 crore rupees have moved out of the market, next day 25,000 crore rupees have come in.
2: और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग 2.6%, जापान का निकेई 0.9% और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% नीचे रहा. वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और ताइवान का ताइएक्स 0.2% चढ़ा. इस बीच अवकाश के कारण चीन के बाजार बंद रहे. यूरोपीय बाजारों में खबर लिखे जाने तक जर्मनी का डैक्स 1.2% ऊपर और लंदन का फुटसी 0.3% ऊपर कारोबार कर रहा था. विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे एशिया और यूरोप के बाजारों की जो आज की परफॉर्मेंस है उसके बारे में?
1: देखिए, मिश्रित नतीजा है और मैं कहूंगा कि ना ही तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीद से बढ़ के है किसी मार्केट में और ना ही उम्मीद से बहुत ज्यादा कम है. हालांकि अमेरिकी बाजार का जो रुख है वो थोड़ा पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि वहां से हो सकता है कि सोमवार को जो है मतलब कुछ क्यू भारतीय बाजारों को भी मिले और खासतौर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं जिनमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है अमेरिकी बाजार में और फेडरल रिजर्व का जो हाल ही का जो फैसला था वो और थोड़ा सा जो एक प्रेशर जो बन रहा है वहां पे, क्योंकि अभी भी वहां के एनालिसिस के मुताबिक लगभग 25-30% उम्मीद ये है कि जो अक्टूबर में एक बार फिर से फेड की बैठक होगी तो उसमें फिर थोड़ा सा और बढ़ोतरी हो सकती है जो ब्याज दरें हैं उनमें. तो ये सब क्यूज हैं जिनका बेनिफिट मिल सकता है. बाकी निक्केई, हैंगसेंग और कॉस्पी, इन सब में जो चल रहा है वो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है प्लस और माइनस में. तो ये माना जा सकता है कि सब ठीक है, नजर बनाए रखें.
0: जी, मेजर यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट यस्टरडे डिस्पाइट अ राइज इन ट्रेजरी यील्ड्स. The S&P 500 gained 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average and the Nasdaq Composite eked out marginal gains. On the economic front, the unemployment insurance weekly claims declined by 1,000 to 1,97,000 in the week ending September 26, according to the data released by the government. Vishal, how does a higher for longer US rate environment transmit to India through the rupee, bond yields, FPI flows, or the account, current account?
1: Well, let's not forget that, you know, and then let's not live in any, illusion here that dollar still has the hegemony globally when it comes to currency market. And of course, dollar's health will impact the health of any currency that includes Indian rupee as well. Yes, the crude oil prices do add some more value to it or, you know, subtract some value from it as well. But largely speaking, we might be, walking into the concern zone once or twice. But overall, I believe this is something which is still under control and something not to be worried about. Again, the bond yields relation between the bond yields and all. I again believe, you know, this is a very, very large game, which was bound rather to be played at some point in time or the other, given the fact that there are a lot of conflicts going on. And let's see how, the so-called economic powers are able to sustain the pain for how long, and that will eventually, I believe, will decide as to where this will.
0: So, how will that impact our stock markets in simpler terms?
1: In simpler terms, well, of course, you know, this is a sentiment which sometimes the mid-level investors do not take in their stride, and that sometimes impacts specific sectoral indices as well, and that then, you know, has a domino effect on retail investors also. But again, this is very cyclical. Next day onwards, there is any positive domestic cue or very positive international cue as well, I'm pretty sure this sentiment will be overshadowed.
0: Okay, moving on, global crude oil prices declined sharply today. Brent crude was trading 2.6% down at $99.64 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 4% lower at $89.13 per barrel at the time of writing this report. Vishal, India's import बट

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत कलकल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
1: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
2: यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए, अपने देशवासियों को।

0: दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुडा ने नियन चेन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार से बात की। कैप्टन स्मित मछार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दौरेस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में अंत्योदय, स्वच्छता और समाज सेवा के उनके आदर्शों को दर्शाया गया। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नलू ने NCC कैडेट से एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों पर आधारित मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज नरसिंहगढ़ के TIT संस्थान में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर वीर विक्रम एकता कैंप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 त्रिपुरा बटालियन NCC ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं

0: भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत कलकल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
1: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूं, उनकी दुआओं से ही ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही

0: चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर से बात की। कैप्टन स्मित मच्छर ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की।
0: प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर का इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। दुनिया भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोग ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे

0: 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
1: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
0: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
3: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
0: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित

0: 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नामपीबू मरिन माई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
3: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
5: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
3: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते

0: नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smit Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lovleen Borgohain and Ankush Pangal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smit Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, "Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others." He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला किया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में कल विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गई। GDPDP पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर 2.42 लाख से ज्यादा विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास

मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2000